संसदों कराने के पहले संवाद संसदों को प्रश्न उत्तर नेपाल भारत सीमा संबंधी प्रधानमंत्री को व्यक्ति विवाद में गलती सक्ष होना आग्रह विपक्षी को अवरोध का बीच का प्रतिनिधि सभा निर्वाचित पारित सरकार को बजट का कारण विद्युतीय सवारी को मूल्य वृद्धि होने उपभोग को बढ़ाएर अर्थतत्व सवारी मान बनाने सरकार को रणनीति गलत न्याय दिया मुस्तांगा वकीलों को भारत में नाराजगी का निर्माण संचालन

ज्ञानक सात बजे को समाचार में पाई स्वागत स्वामी शुरू कर समाचार का मुख्य मुख्य शीर्षक राष्ट्रीय बहुमुखी चार पर स्वागत से हमारे समाधिकारी निर्वाचित महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भर ठाकुर कुमार ठाकुर बाबा का स्वर और दिया मैं स्थानीय कहा माइकिन खर्चा तीन करोड़ ठंडा बढ़ी डिजिटल विद्या रेखा शीतकालीन या मध्य रात में राष्ट्रपति द्वारा दीप एक प्रमाणीकरण समाचार विस्तार में बर्दिया को बांसवाड़ी नगर पालिका पांच स्टेट आश्चर्य बहुमुखी कैंपस को संचालक समिति का अध्यक्ष महादेश अधिकारी निर्वाचित हो।

0: खाने में तुरमा आयरन कैल्शियम फैट जुटाए स्वस्थ हटाए सुरक्षित परिवार
1: स्वास्थ्य
0: कार्यालय संदेश।

0: कदम बढ़ाते हैं कोई गरीब जीवन भारत अन्या हाल
1: एक पटक सेवा करने बहुत आवश्यक दिन हमारा आस्था है।

आर्थिक वर्ष सर्वप्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2081/82 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रस्तुत र विधान सभा चुनाव।

0: राशि दिएपछि उपचारकै दिशा
1: नसा डाक्टरले बिरामीहरूका बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपन्चर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
0: 24 घण्टा एम्बुलेन्स र व्यवस्थाकै दिशा असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक गणपूर्ण सेवामा 10% छुटकीय व्यवस्थाकै दिशा कौशल्य अस्पताल प्रहरी बाँसकरी शाखा 5 बाँसकरी बर्दिया पुरानो पेट्रोल पम्प दक्षिण बजार
1: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 सास्करी बर्दिया सँगसँगै फोन 11 चौतारा सेवा

0: करना, नाराबाजी करना और जनतीय अपाक्षीय गतिविधि करना गैर कानूनी व वित्तीय अनुशासन विरुद्ध को निंदनीय कार्य हो।
1: एक नेपाल नवोदित वित्तीय संस्था लिमिटेड हो रेडियो को सहकारी हो जनहित में जारी संदेश
0: आवाज को दूध पत्र को पहले अवसर हो जन्मे को एक घंटा भित्र

स्वास्थ्य सेवा प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य सेवा सर्वस्वत रूपमा यहाँ स्वास्थ्य सेवा आवश्यक कौशल्य अस्पताल भाषा

0: छ बजेसम्म विशेषज्ञ फिजियल डाक्टर शेख प्याज छाती फलेजो नसा मुटु चेक जाँच कैलेखा
1: प्रत्येक दिन नसा तथा न्यूरो सर्जरी हात जोड्नु तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गराइन्छ।
0: चौबिसौ घण्टा डिजिटल एक्सरे भिडियो एक्सरे इसिजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भए सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध भए प्यारालाइज शिशुको मुभाग होइन नसा धापको हातद्वारा अनि चल्ना गिरा फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि मसे उपचार कैदेखा
1: नसा धपले बिरामी बिना प्रेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार गर्दै
0: चौबिसौ घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिएका असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवामा 10% छुटकी व्यवस्था गरिदिएका कोशीले अस्पताल प्रणाली बाँसगढी शाखा 5 बाँसगढी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण पाँच
1: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400102 बाँसगढी बर्दिया सँगसँगै फोन नम्बर 14

त्यसपछि स्वस्थ जीवन अपनाए। निशाका रोग छुट्टा भारत ध्यानी बिहेभियर जीवन खत्तम हुई। सन्तुलित खाना खाए, व्यायाम शब्द करी, धूमपान मदिरा मध्ये दूर रही, तनाव भना नियन्त्रण करी, आज निर्णयकारी जीवन अचार, निशाका रोग सेवा स्वस्थ जीवन।

तीन जन गए तो काय चिंता करतो मार्केट कुठून गेलं ते पाहिजे की त्या गाव बाजारी बाजार किसान तो ते लगे सीधा फिर की तरह आप सब कुल के लगे पड़े तो यहाँ के नेपाल के भावों से आप सुंदर जी के कर रहे हैं क्यों ठीक बात है दीदी सर हमने यहाँ हमें दर आप सोच रहे हैं हमने पांच लाख कुछ दो

चौधरी वास्तविक नगर पालिका वालों चार प्रथा का विरोध किया और परवर्ती जड़ी बूटी उद्योग मंडल तथा राष्ट्रीय स्तर पर जितने किस्म का अवसर मिलता करने पर हम लोगों को प्रवर्ती जड़ी बूटी उद्योग का था लगायत सब प्रको अवसर करने जल्पने विषाक्त चीज ने रोके सब को अवसर उपचार करने हमी अवसर उपचार करते गरीब स्रोत भर अन्य

0: संध्या सवा 6 बजे हमारा संदेश में अपने भाव स्वागत दास रुपया केन्द्र संभव में प्रक्रिया से उत्पादित हमारा संदेश प्रक्रिया पर साथ रेडियो स्वास्थ्य समस्या लुम्बिनी प्रदेश में पार्टी आसोरी बहुमुखी कैंप संचालक समिति का अध्यक्ष अधिकारी निर्वाचित बाथरूमा प्रत्याजन्य पदार्थ का अवैध उत्खनन प्राप्त निगरानी भूमिहीन का पशु सुनिश्चित कर जन्मोद्रा का मात्रा टीका उपाय करना ज्ञापन पत्र वो प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री का व्यक्ति विपक्षी का अनुरोध कचहरी कार्यक्रम का पूरा समाचार बिंदु से
1: जनस्वास्थ्य समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा भर्ती गर्दा सदर रोग शिविर निशंका रोग मुस्लिम मरण प्रत्याजनहरूले पछि यी हजार भूमिकाहरू गर्न उद्देश्यले महिला बाल बालिका तथा किशोरी स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर खाना नियमन तथा नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत स्वास्थ्य कर्मीले वर्गका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रमुख नेपाली जानकारी कार्यक्रमबाट लुम्बिनी प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको 44% भने हत्या प्रदानको समस्यामा बाधा प्रदर्शित 34% भइरहेको स्वास्थ्य प्रतिशत समस्या निर्यात कक्षाका सार्वजनिकहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश मध्य जिल्ला स्वास्थ्यका उच्च समस्याहरूका

0: विधान सभा मुदुर प्रसाद परियल तथा जेठ 19 बजे संकुला स्थगी फिलक चंद्रवाद यात्रा कराकर आज वैष्णव कचारी में विपक्ष दलों का विरोध के कारण 15 मिनट कला स्थगित कर दिया है। तर फिर से शुरू हुई कचारी के मौके विपक्षी सांसदों के अवरोध जारी निर्वाचन संसद का काम कार्य का बड़ा निशा कर रहा प्रधानमंत्री भारत शाह नेपाल की भारत को भूमि नमूना अभिव्यक्ति सच्चाई पन्ना मांग प्रति विपक्षी दलों का संसद विरोध दलों फिलहाल विपक्षी सांसदों का प्रधानमंत्री कार्य राष्ट्रीय हित विपरी जनता प्रति अपन बारे में स्पष्टीकरण हो अभिव्यक्ति सच्चाई पन्ना मात्र लगातार अवरोध के कारण प्रतिनिधि सभा का पत्र निर्धारित कार्यसूची में प्रवेश निरेखा स्थगित कर दिया।
1: राष्ट्रीय समाचार सुन हमारे संदेश का समय बुराई लागल बा हमारे संदेश सुनैला से पहला मुख्यों के संदेश स्वीकारा जन स्वास्थ्य समस्या लुम्बिनी प्रदेश में पार्टी नेता वो विपक्षी दल कर्मचारी मंत्र अवरोध पास और प्रतिनिधि सभा का कर्मचारी कार्यक्रम द्वारा स्थगित कर दिया। नेपाली भाषा कुमार सन्देश लेखाइने पार्टी तब समग्र समाचार कक्षाका सकुल सङ्ख्या आर्थिक सङ्ख्या गौरी शङ्करसँग सङ्ख्या बिन्दु कुमार रेडियो प्रभाव सुन्दै रहे।

0: 才发的，阿姨发的是到那前夕，我们在古大古地嘛，那他在山里里杀猪包呢，山那么处理，南盘茶水茶，盘菜盘，冰菜叶，也没得啥，我是那韩国地方的西式的，我给他爱上也不错。
1: 下台，我是你妈妈，有呀。देवी पोटास विभिन्न खाद्य तरकारी का विभिन्न विषादी पशुपति को औषधि उपचार मूल्य में गईन्छ
0: स्थान श्रेष्ठ एग्रोटेक बास्करी किसान चोक देखि दक्षिण सामुदायिक पुस्तकालय को पूर्व साइड में
2: महिला पारंपरिक निकाय कृषि में धीरे कमी ने दूध उत्पादन में कमी आने उच्च जोखिम होने उच्च तापमान को कारण दूध उत्पादन घटे आमदानी
3: इसलिए हजुर को यही जोखिम संबोधन करते ग्राम को सहकारी सभी को इंसुरेंस में आधुनिक पद्धति में आधारित हुई बिना कोई झंझट बीमा करना बिना कोई कागज चाहिए पदार्थ ने व्यवस्था
2: लेकर

सभी आयोजित सभी राष्ट्रीय उद्योग दिवस कार्यक्रम में बोलते मंत्री चौधरी ने इन क्षेत्र में किसान को रकम समय में फर्जी उठ करना आग्रह

0: मैंने कहीं कार्य नहीं करना उसका बहुत अच्छा
1: प्रधानमन्त्रीको सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्ति चलाउन कानूनविदको सुझाव विशेष कुराकानी लगायतका सामग्री बाँकिनेछ सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
2: नेटवर्कद्वारा संचालित

साधन बस एक विपक्षी दल का नेता ने प्रधानमंत्री को धारणा को विपक्ष में संयुक्त रूप में आवाज उठाने निष्कर्ष निकाले थे। इसी बीच प्रतिनिधि सभा में आईतवार अमर्यादित गतिविधि भाग पाइय सभामुख्य छानबीन का समिति गठन कर आईतवार प्रतिनिधि सभा में विपक्षी दल का सांसद रेल घेराव करने क्रम में नाराबाजी और घंटा घंसी समेत भाग प्रतिवेदन बजाउन समितिलाई सात दिन को समय दिएको सभामुख परियालले जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने पाँच दिने भ्रमणका लागि आज भारत पुगेका छन्। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा नेके पार्टी पदाधिकारी सहित नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र शाहको नेपाल भारत सेना विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिले राजनैतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला भएको लामिछानेको

0: सपना साकार हुआ है और जो लख उपचार केंद्र में जाने पर
1: विश्वास लगा वो सही जानकारी फायदा वो लख उपचार केंद्र कहाँ बना गई अस्पताल लग अधिकारी यस इसने बैंक नेपाल डॉट ओ आर जी में जाकर आवश्यक जानकारी लेने से सीखा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै दिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वोच्च अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत गर्दै